ए चाय मुबिते दोनें चाय लगोना जानतोस तो वाला सुवाके ने वाकेला कर तांकिल केनी दायु डाटू सिंगोंगान गुमें चाय ने लाकर गरुबो बस्तरियू